0: के कल्लन बोला,
1: ए मुन्ने भाई वो देख के कयामत चल रही है बाप।
0: अपुन का खोपड़ी सनका। कल्लन को पकड़ो, बोला इधर आ सारे, तेरे को कयामत दिखाता हूँ। सारे को इतना धोया इतना धोया, अभी तक खोपड़ा पकड़ा है और आज तक अपुन के साथ उसका 36 का आंकड़ा है। समझा समझा क्या?
2: फिर हिमा का क्या हुआ?